0: ऊँटी है
1: तेरी
2: अरे क्या
1: भीग में
2: अरे अरे ऊँटी पलाई नहीं आशु
1: तेरे को मिस नहीं
3: अरे बन्या
1: बन्या जो विकेट दिया बाप रे जब भी